0: भी आ रहा तो लिए
1: ओए वाय सट गया थावे सट गेदर की हुआ टे आवे सट गेदर याने के तब आई अमार रूम वेडी
2: सल नल लन दलु विलस नितंब न लोला नितंब न लोला नितंब न लोला
3: इन दाल में इन दाल याना तेरी नवती लो इन्हीं दाल में